0: अपने टर्म्स पे जीने को रिबेलियन कब से बोलने लगे?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और अक्सर रिबेलियन को लेकर एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि भाई जो इंसान समाज के सेट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता वो रिबेल होता है। बट एज पर मी, जो इंसान अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना चाहता है इज नॉट अ रिबेलियन बट अ नॉर्मल इंडिविजुअल आई गेस। इनफैक्ट इस चीज के बारे में अचानक चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली इम्तियाज अली से एक इंटरव्यू में एक इंसान ने पूछा कि भाई आपकी फिल्मों की जितनी प्रोटैगनिस्ट्स होती हैं वो अपने घर से भागना ही क्यों चाहती है, वो रिबेल क्यों है। जिस पे उन्होंने कहा कि भाई कोई भी सेटअप अगर किसी इंडिविजुअल के लिए सही नहीं लग रहा, वहां वो काफी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, बंधा हुआ फील कर रहा है, then he or she, irrespective of his or her gender, must just leave the space. और सही भी है ना, अगर कोई जगह आपको बांध के रख दे रही है, आपको अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जीने का मौका नहीं दे रही, तो आपको स्पेस चेंज कर लेना चाहिए। एंड दैट माई डियर फ्रेंड doesn't मेक यू अ rebellion. It is as human as every other thing that we do. बाकी आपका इस चीज पे क्या ख्याल है, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

आज का वर्ड ऑफ द डे है बनस्पत, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है एज अपोज टू। अब इसे एक एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अमेजिंग सज्जन किस्म का इंसान है, बनस्पत आपके बॉयफ्रेंड के, जो आपको सिर्फ एक बैंक और काम वाली बाई समझता है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी इस सेंटेंस का ये है, इट इज टाइम दैट यू डम्प्ड योर बॉयफ्रेंड हनी, इफ ही इज ट्रीटिंग यू लाइक अ बैंक देन मे बी इट्स टाइम यू डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। ऑन दैट नोट, अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही इसके विपरीत है एंड यू एक्चुअली मेट समवन हूज रियली इनक्रेडिबल, आपने कभी सोचा भी नहीं था आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी डिटर्जेंट पाउडर की तरह, हिट मी अप एंड टेल मी योर लाइफ स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गौर से देखो कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीज रिपीट हो रही है एज अ पैटर्न, क्योंकि अगर वो रिपीट हो रही है इट मींस यू हैवंट लर्न्ड द लेसन येट, विच इज काइंड ऑफ द रीजन व्हाई आई एंड अप इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. मैं अभी तक सीखी नहीं हूँ कि रेड फ्लैग से दूर रहना है, ग्रीन फ्लैग्स को गले लगाना है. अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही रेड फ्लैग वर्सेस ग्रीन फ्लैग सिचुएशन है, हिट मी अप एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची, रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी धैर्य है. हाय धैर्य.
1: नंबर मिला था बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका कॉल आएगा.
0: जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. क्या कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में आजकल धैर्य?
1: मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता. आई एम एक्चुअली स्टूडेंट.
0: ये तो अच्छी चीज है.
1: पर कुछ इतना होने वाला रोशी.
0: क्या नहीं हो रहा?
1: शी इज माई फ्रेंड. आई लाइक हर. शी ऑल्सो लाइक्स मी. बट उसके घर में इशू है.
0: तो स्कूल में या कॉलेज में?
1: हम उस कॉलेज में हैं.
0: तो तुम छुप छुप के भी तो मिल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है?
1: हम छुप छुप के मिलते हैं बट उसको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम ज्यादा क्लोज हो गए तो जब बिछड़ेंगे तो ज्यादा दुख होगा ना.
0: पॉइंट तो है, तेरी गर्लफ्रेंड काफी लाइक इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल है.
1: मैम इतना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए ना. प्यार कौन सा इंटेलिजेंस से होता है, वो दिल से होता है ना.
0: देखो एक बात बताओ वैसे धैर्य, ऑनेस्टली अगर तुम्हारा दिमाग इतना अच्छे से चल रहा है ना, दैट मींस तुम्हारा प्यार लाइक EQ है, इमोशनल क्वोशेंट, वो थोड़ा कम है, और जो तुम्हारा IQ है ना, दिमाग का क्वोशेंट, वो थोड़ा ज्यादा है. तेरी गर्लफ्रेंड प्रैक्टिकली तो सही बोल रही है कि मतलब जितने क्लोज होगे बाद में उतना ही दुख होगा. बट देखो कोई फर्क पड़ता है उससे? मुझे तो ना पड़े. अगर मैं हूँ और आई नो कि यार ठीक है मेरा रिलेशनशिप शादी में नहीं बदलेगा बट मुझे मोहब्बत है असली, तो जब तक चल रही है मैं तो चलाऊंगी यार. उसके बाद मैं देवदास बन गई तो बन गई.
1: बिल्कुल रोशी, मैं उसे यही बोल रहा हूँ कि आज तो जी.
0: हाँ एग्जैक्टली,
1: जो समय होगा देखा जाएगा.
0: और कल क्या पता यार, पेरेंट्स मान जाए, जो भी तुम्हारे इश्यूज हैं रिजोल्व हो जाए, या हो सकता है कि 2 साल बाद तुम ही एक दूसरे में इंटरेस्ट ना हो. धैर्य आई फील कि तुम्हें आज प्यार हो रहा है ना, कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल बाद तुम्हें एक दूसरे से उतना ही प्यार हो जितना आज है. उसके बारे में सोच करना, बिकॉज उसने जो किया है तेरे साथ, वो जो अब कह रही है, वो मैं भी एक बंदे के साथ कर चुकी हूँ और जिंदगी भर बैठ के रिग्रेट किया मैंने. अब क्योंकि तुम कॉलेज से निकल के ऑफिस में चले जाओगे, उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे. यू बोथ नीड सपोर्टिव पार्टनर्स. अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 6-7 months लेट्स बी टुगेदर, और उस 6-7 months के बाद देखेंगे क्या करना है. थोड़ा टाइम बाय कर ले उससे अभी के लिए. जस्ट गो विद द फ्लो राइट नाउ.
1: मैं उसको गाना सुना दूं?
0: कौन से वाला?
1: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो.
0: यू आर सच अ रॉक स्टार. आई डोंट नो अबाउट दिस गर्ल बट अगर मैंने तुझसे 5 मिनट और बात की ना धैर्य, तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा. इसलिए मुझे लग रहा है कि तू इस बंदी को तो कन्विंस कर ही लेगा. एंड फॉर द फ्यूचर विद द गर्ल आई हैव दिस फॉर यू.
2: यू've बीन रोशिफाइड.
0: I love you so
1: same
0: much.
1: Here. Same here. I love you too, Roshi.
0: All the best to you, sweetheart.
1: Bye.
0: Okay, bye. अगर आपकी भी जिंदगी में धैर्य की तरह आपके पास तो धैर्य है लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड के पास धैर्य नहीं है, why don't you hit me up and we will talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आँखों ही आँखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए खुस खुस खुस खुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़, ओए आँखों ही आँखों में कर बातें, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, ओए खुस खुस खुस खुस खुस, ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़, ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़।

मिर्ची, इट्स हॉट।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

जो मैं नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

Energy. It's hot. Mirchi, it's hot.

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी।

Mirchi. It's hot.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, अ स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साड़ी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, किस्सा कहानी कुछ भी बताना हो, @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके क्विकली हिट मी अप। गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेस को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: हाँ वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनेको ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खान रावटोर का म्यूजिक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ। इट्स टाइम फॉर आवर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अश्काय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

तेरा मेरा प्यार बाय कुमार सानू। ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात। आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट। एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट। This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video. मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था, ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे। What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को इनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, व्हिच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक। दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है, बट है ऐसा ही है, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये। कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार, अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया, मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन। एट RJ करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। जो गाना आपको आज ये से गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s, अ इंडी पॉप सॉन्ग, मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन @RJ कनिका, एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ। Sanju Rathod is back and how, this time with Bangles। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके Bangles is playing right next for you on Gaana number 5। You are listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका, enjoy। Number 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।

10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @rjkanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। यहां पर हम आने वाले गानों को डिस्कस करते हैं, कौन नए कोलैबोरेशन हो रहे हैं, किसका गाना हुआ काउंटडाउन से आउट या कौन सा गाना हो सकता है इन। गाना नंबर 4 पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीज टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल्ड अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. दिल ना जाने एंड ये दोनों आइकॉनिक आर्टिस्ट आती हैं टू क्रिएट नागिन, विच आई एब्सोल्युटली लव। इवन 2019 से 2026 तक आई कैन नॉट नेम अ लॉट ऑफ फीमेल डुओ पॉप सॉन्ग्स। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हियर्स मी पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स, आस्था एंड अकासा, वी नीड अ न्यू सॉन्ग फ्रॉम यू। दिस इज नागिन ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: दिलजीत दोसांझ एंड सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कनिका के साथ दिस इज द गाना इंडी टॉप

0: पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर इन अ सॉन्ग। गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके Dealer is this week on गाना नंबर 3। You're listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 3।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार, अंट शंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप राइट फ्रॉम द टॉप। अनूप जैन का अर्ज किया है वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: नई नवेली एंट्री हर्ष नुसी का साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9।
3: अखियां ने अखियां मिलाती सही साड़ी सुने अपनी सुनाती सही।
1: अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 8। एमसी स्क्वायर का लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन गाना नंबर 7। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत येट अगेन विद डीलर ऑन गाना नंबर 3।
4: जिदे तू पीछे यातनगी ना चोबर जोगी डब दबीना।
1: द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, मिट्टा रोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा कंपोज्ड बाय मिट्टा रोर दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक, गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga. Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpai ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोज बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 17. Who pass

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट। और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है। और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। यू हर्ड दिस सॉन्ग इन रावण, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5. Wow.

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। सर आज सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें हैं आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्म्थ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

मशूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है, और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, it's hot.

Energy. It's hot.

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: बस तुम रहते हो।
1: झनक झनक झन तबक झनक तबक झनक खनक खन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन ध

da ba da ba ma ga ma ri ri ri ri sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni sa.

0: Energy. It's hot.
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम न

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

मिर्ची, इट्स हॉट।

हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में, और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर चाय थोड़ी सी ज्यादा गर्म होती है, गॉसिप थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्पी होता है, और प्लेलिस्ट एकदम शेफ्स किस की तरह होती है। अब ये ब्रेकफास्ट टाइप की बातें शुरू इसलिए हो गई है क्योंकि ये शो जो है वो ब्रेकफास्ट शो है, और गर्मा गर्म सर्व किया जाता है यहाँ पर तुम्हें गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। ऑफ कोर्स आगे लाइंड अप है तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स, लेकिन बीच बीच में मैं भी आती रहूंगी, तुम्हें बताती रहूंगी अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, थोड़ी सी बॉलीवुड की गॉसिप्स तुम्हें देने वाली हूँ, और साथ साथ में तुमसे यहाँ वहाँ की बातें करने वाली हूँ, थोड़ा सा बैक होम नॉस्टैल्जिया तुम्हें देने वाली हूँ, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी बकबक भी करने वाली हूँ तुम्हारे साथ में। सो अपना सीट बेल्ट लगा लो, कॉफी पकड़ लो, चाय उठा लो, और अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर चिपक के बैठ जाओ मेरे साथ, क्योंकि शुरू हो चुकी है ये जर्नी जिसे हम कहते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग टू यू, वेकी वेकी। अभी चला दे तुम्हारे लिए मिर्ची दार बैंगर्स। अगर मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

आज का दिन नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर ऑफ दिन है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब सबसे पहले पता करते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। सबसे पहले 1863 में शुरू हुई बैटल ऑफ गेटिसबर्ग, अमेरिका के सिविल वॉर का एक टर्निंग पॉइंट। फिर 1867 में कनाडा ऑफिशियली बना अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन। आज वहां कनाडा डे सेलिब्रेट होता है। तो अगर आज तुम्हारे कनेडियन दोस्त थोड़े से एक्स्ट्रा पोलाइट लग रहे हैं, डोंट यू वरी, दे आर जस्ट बीइंग कनेडियंस। 1898 में थियोडोर रूजवेल्ट के रफ राइडर्स ने सैन हुआन हिल्स चार्ज किया, और नाम सुन के लगता है जैसे कोई बाइकर गैंग हो, लेकिन हिस्ट्री हैड डिफरेंट प्लान्स। 1916 में शुरू हुई थी बैटल ऑफ द सोम, वर्ल्ड वॉर वन की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग बैटल्स। 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेंडन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने दुनिया को दिए दो फाइनेंशियल जायंट्स, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। और 1997 में हांगकांग ब्रिटिश रूल से ऑफिशियली चाइना को हैंड ओवर हुआ अंडर द आइडिया ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स। और इंडिया में आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। द इनक्रेडिबल डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिनका बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों आज ही के दिन है। तो अगर आज किसी डॉक्टर को मिलके उसे थैंक यू बोल के जादू की झप्पी दे सको तो जरूर देना। और क्योंकि लाइफ सिर्फ सीरियस नहीं होती, आज इंटरनेशनल जोक डे भी है, इसलिए ऑफिस में अगर बॉस बोले कैन यू वर्क लेट, बस होप करना कि वो जोक कर रहे हो। और साथ साथ में आज है अमेरिकन जू डे, इंटरनेशनल रेगे डे एंड क्रिएटिव आइसक्रीम फ्लेवर्स डे। टेल मी द वियर्डेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर दैट यू हैड। फॉर मी इट्स टूथपेस्ट आइसक्रीम। फटाफट से मुझे डीएम करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647 4. Stay tuned and stay hot. Just bounce.

बात पता चली है जिसकी वजह से द इंटरनेट इज गोइंग गागा ओवर हिम. इन द मूवी ही इज प्लेइंग अ 16 ईयर ओल्ड किड्स कैरेक्टर, लेकिन एक्चुअली में उनकी एज है 33 इयर्स ओल्ड, और उनके फोटोज देखकर उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता. सबसे मजेदार पार्ट ये है कि सेट पर भी सब उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे थे. बाद में जब डायरेक्टर ने सबको बताया कि गाइस गाइस रिलैक्स, ही इज एक्चुअली 33, तब जाकर सैफ अली खान और संजय मिश्रा उन दोनों ने उनसे प्रॉपर ग्रोन अप्स वाली कॉन्वर्सेशन शुरू की, और सैफ तो उनकी रियल एज जानकर लिटरली शॉक में पड़ गए. एंड आई स्वेयर इफ यू लुक एट हिज पिक्चर यू विल बी शॉक्ड टू. मतलब कुछ लोगों के जीन्स इतने पावर फुल होते हैं कि पासपोर्ट की एज कुछ और होती है और फेस पर कुछ और लिखा होता है. और यहाँ मैं एक ऑल नाइटर पुल करने के बाद सीधे अपनी दादी माँ लगने लगती हूँ. वैसे अगर तुम भी ऐसे लोगों में से हो जिन्हें हर जगह अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, कांग्रेचुलेशंस. फ्यूचर में यही कॉम्प्लीमेंट्स का फिक्स डिपॉजिट बनने वाला तुम्हारे लिए. राइट नाउ चेक आउट माई सोशल्स. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड सुन रहे तुम मिर्ची मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब पता करते हैं वेदर का हालचाल क्या है। फिलहाल टेम्परेचर है अराउंड 73 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज जो है वो मोस्टली क्लियर है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। परफेक्ट टाइप का वेदर है कसम से, और टेम्परेचर फील होगा 72 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। लेकिन ये सुनो, 9 से 10 बजे के बीच में थोड़े से क्लाउड्स आ जाने वाले हैं, उसके बाद फिर पार्टली क्लाउडी स्काइज हो जाने वाला है। तो सूरज आज फुल बॉलीवुड हीरो की एंट्री मारेगा, मतलब कभी कभी दिखाई देगा। आज के दिन हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 96 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर होने वाला है 99 डिग्रीज फारेनहाइट तक, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी तक। लेकिन ह्यूमिडिटी और सनशाइन मिलकर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वेदर डिपार्टमेंट में, और इसीलिए हमें थोड़ी सी गड़बड़ फील होने वाली है। गुड न्यूज एक मेरे पास है कि रेन का 0% चांस है। लास्ट 24 आवर्स भी ड्राई थे और अगले 24 आवर्स भी ड्राई होने वाले हैं, जस्ट लाइक माई ह्यूमर। मतलब कि आज अम्ब्रेला को घर पर रहने दो, लेकिन खुद का पानी लेकर बाहर निकलना जरूरी है, यानी कि वाटर बॉटल कैरी करना चाहिए। यू गॉट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज आज एक एक्सट्रीम हीट वार्निंग भी है और एयर क्वालिटी अलर्ट भी इशू हुआ है। अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून में आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करना या बहुत ही लिमिटेड करना, और बाहर जाओगे तो SPF 50+++ वाला सनस्क्रीन मल कर जाना अपने मुंह पर, हाइड्रेटेड रहना, और अगर किसी को देखकर लगे कि वो मिर्चीदार हॉट हो रहा है तो उसे थोड़ा सा पानी पिला देना। तो इन शॉर्ट आज का वेदर जो है ना टिपिकल हमारी बुआओं की तरह है, सुबह सुबह प्यार से मिलेंगे लेकिन दोपहर आते आते लेक्चर दे सकते हैं। और अगर तुमको वेदर की अपडेट्स के साथ थोड़ी सी मस्ती भी चाहिए तो फटाफट से फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अब चलने वाला है सबसे पहले अमेरिका से एक बिग लीगल अपडेट आ रही है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट सॉट टू लिमिट बर्थराइट सिटीजनशिप। द कोर्ट लेफ्ट इन प्लेस अ लोअर कोर्ट डिसीजन ब्लॉकिंग द ऑर्डर, सो द पॉलिसी कैन नॉट टेक इफेक्ट व्हाइल द लीगल प्रोसेस कंटिन्यूज। एज ऑलवेज लीगल मैटर्स लाइक दिस कैन कंटिन्यू थ्रू द कोर्ट्स, सो वील कीप एन आई ऑन हाउ द स्टोरी डिवेलप्स। नंबर टू पर अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है इट कैरिड आउट स्ट्राइक्स targeting ISIS positions in parts of Pakistan, claiming those locations were being used to plan attacks. The situation comes after recent cross-border tensions, making it another reminder that regional security issues remain serious and closely watched. And finally, for football fans, Norway scripted history with their first ever FIFA World Cup knockout victory, beating Cote d'Ivoire 2-1. Antonio Nusa scored first, Amad Diallo leveled it, and Erling Haaland sealed the win. And next stop for Norway, a blockbuster clash against Brazil. And that's it for Mirchi Awak at 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein Insta aur X par. Mera naam hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

98.3 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

for your love. गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स। और पता है चाइना में एक डेफ और म्यूट जेंटलमैन जिनका नाम है ले ज़ाचिंग, ये 35 इयर्स के बाद अपनी फैमिली से फाइनली मिल पाए। ना ही डीएनए टेस्ट हुआ है, ना ही कोई वायरल वीडियो हुआ, बल्कि एक चाइल्डहुड हैबिट की वजह से। बचपन से ले जो है वो अपना नाम उल्टा लिखते थे, यानी कि बैकवर्ड्स। और सालों के बाद एक चैट ग्रुप में उनके भाई की नजर इसी यूनिक हैबिट पर पड़ी। एक छोटी सी डिटेल और पूरा परिवार जो है वो फिर से जुड़ गया। स्टोरी यहाँ से और इमोशनल हो जाती है। 1991 में ले अपने दोस्तों के साथ चुपके से ट्रेन में चढ़ गए थे। सफर के दौरान वो सो गए थे और फिर उनकी फैमिली से बिछड़ गए थे। कौन सोच सकता है कि 35 इयर्स के बाद एक पुरानी आदत उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा देगी। कभी कभी हम सोचते ना कि हमारे छोटे छोटे क्वर्क्स जो है ये लोगों को इरिटेटिंग लगते होंगे, दे विल स्टॉप लविंग अस इफ वी कंटिन्यू डूइंग दोस थिंग्स, लेकिन यही चीजें हमें यूनिक बनाती है। अब देखो कैसे किसी के सिग्नेचर नाम लिखने के स्टाइल से उनकी पहचान उनके घर वालों को हुई। और एक बात और है कि आज घर पर ही किसी अपने को कॉल कर लेना, ये पूछ लेना खाना खाया कि नहीं खाया। कभी कभी ना एक छोटा सा केयर, एक छोटा सा कंसर्न किसी इंसान को बहुत जरूरी होता है जो उन्हें मिल नहीं पाता। और हो सकता है ऐसे मौके पर तुम अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी कजन, अपने किसी लव्ड वन के काम आ जाओ। और काम से मुझे याद है, एक काम की बात तुम्हें बतानी है मुझे। आरके जूल्स लेकर आए हैं तुम्हारे लिए रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस, यानी कि जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है, तुम पे करते हो फॉर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड डायमंड की वैल्यू। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सब कुछ तुम्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ आरके जूल्स पर। तो वीकेंड पर अगर गोल्ड या डायमंड खरीदने का प्लान है तो यहाँ जाना तो बनता है। और इसी बात पर इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और ये मिर्ची मॉर्निंग्स पर जुलाई 1st के बर्थडे बेबीज को विश करने का टाइम। आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम्हें एक ज्यादा की जप्पी और साथ में पपी। और अब सुनो कि बर्थडे गैंग तुम्हारी काफी फिल्मी है। सबसे पहले डैन एक्रॉयड और साथ में बीच पे स्लो मोशन की क्वीन पैमेला एंडरसन, जिनका नाम सुनते ही 90s का फ्लैशबैक आ जाता है। एलन रक भी आज के दिन अपना बर्थडे मना रहे हैं, एंड साथ साथ में लिव टाइलर, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और आर्मागेडन में सबका दिल जीता था, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और जेंजी स्क्वाड के लिए स्टॉर्म रीड, जिसे तुमने यूफोरिया और द लास्ट ऑफ अस में देखा होगा। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, तो ये याद रखो कि बर्थडे के साथ सिर्फ खुशियां बढ़नी चाहिए, स्ट्रेस लेवल नहीं। मिर्ची की तरफ से तुम सबको लोड्स ऑफ लव, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ढेर सारा सक्सेस, और साथ में रिलेटिव्स का प्रेशर थोड़ा सा कम मिले। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, अपने बर्थडे सेल्फीज, इनविटेशंस, शाउट आउट्स, केक्स, जो कुछ भी भेजना चाहते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड साथ साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: गुड़ किन खा लिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जी का नाना किन खिचया, खिच के मर किन सीटी।

0: टाइम फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर रेट अपडेट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,320 $4,320 पट रहा है। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं इस फादर्स डे की सिलेक्शन पे, जब 22 कैरेट गोल्ड मेंस ब्रेसलेट, 22 कैरेट गोल्ड की चेन, 22 कैरेट गोल्ड के मेंस सिक्की कड़ा या प्लैटिनम की चेन्स और प्लैटिनम के मेंस बैंड। आइए राज ज्वेल्स की खूबसूरत सी सिलेक्शन देखने के लिए, जिसमें आप आज 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी अप्रूव होने पे घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दे सकते हैं फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए। मिलके राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
0: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे बातें करनी है तो कनेक्ट करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवा का 3। यहाँ पे तीन बड़ी खबरें तुमको मिलती है। सबसे पहले टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टेडली प्लान्स अनदर राउंड ऑफ लेऑफ्स व्हिच कुड अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस सेल्स एंड कंसल्टिंग रोल्स। रिपोर्ट्स से द अनाउंसमेंट मे कम एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। अगर तुम टेक इंडस्ट्री में हो तो बस ये याद रखो कि नेटवर्किंग फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर टू पर इलॉन मस्क इज मेकिंग हेडलाइंस अगेन आफ्टर अ पोस्ट ऑन एक्स अबाउट फेमिनिज्म चिल्ड्रन एंड हैप्पीनेस स्पार्क्ड अ ह्यूज ऑनलाइन डिबेट। सपोर्ट भी मिला है और क्रिटिसिज्म भी मिला है और सोशल मीडिया ने अपना फेवरेट हॉबी कंटिन्यू रखा है कॉमेंट सेक्शन को रेसलिंग रिंग बनाने का। एंड आखिर में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन मिलिट्री स्ट्रक रशियाज लार्जेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर इन द मॉस्को रीजन क्लेमिंग इट वॉज बींग यूज फॉर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी डेवलपमेंट्स फास्ट मूविंग है और सिचुएशन को दुनिया भर में क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एंड आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट। फिलहाल मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। डू फॉलो मी एट MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर। दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला और वेलकम टू राशि जोन पार्ट वन ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, अगर किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया है, रिएक्शन तो बनता है लेकिन फुल बॉलीवुड रिवेंज सीक्वल की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लासी रहो। लकी कलर इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, गट फीलिंग सही हो सकती है लेकिन गूगल को भी खोल लो, होमवर्क के साथ साथ हंच कंबाइन करोगे तो शायद जैकपॉट मिल जाए। लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सोशल बैटरी 100% है, फ्रेंड्स फैमिली कॉलीग्स के साथ वाइब्स सेट हो जाएंगी, तो घर से बाहर निकलो, लाइफ सिर्फ ईमेल्स का नाम नहीं होता है। लकी कलर इज डार्क ब्लू, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, क्विक कैश का चांस मिल सकता है लेकिन ये याद रखो बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, हार्ट बैलेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लव का आरओआई सबसे बेस्ट होता है। लकी कलर इज पर्ल, लकी नंबर इज 6। लियो यानी कि सिंह राशि, जो चीज तुमको ट्रूली एक्साइट करती है उसी पे फोकस करो, आज की मेहनत फ्यूचर का स्टैंडिंग ओवेशन बन सकती है, स्पॉटलाइट तुम्हारा वेट कर रहा है। लकी कलर इज गोल्डन, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, नेगेटिव लोगों को म्यूट कर दो, लाइफ का अल्गोरिथम पॉजिटिविटी पे चलाओ और आज जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ग्रो कर पाओगे। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 22। एंड दैट्स राशि जोन पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर अभी थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी मैं, बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: I'm back with Rashi's own part द्वितीय. अब fasten your seat belts क्योंकि हम राशियों की बात करने वाले हैं.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि. लाइफ थोड़ी सी मैसी लग सकती है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ट्रस्ट द प्रोसेस. कभी कभी जूम आउट करके देखना भी जरूरी होता है. लकी कलर इज रोज पिंक. लकी नंबर इज 18. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. बॉस, क्लाइंट या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलना हो तो चार्म को ऑन रखो. आज फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन बनने वाला है. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि. न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना इजी है. फिनिश करना इज द रियल फ्लेक्स. आज इनकम्प्लीट लिस्ट को कंप्लीट करने का दिन है. लकी कलर इज रॉयल ब्लू. लकी नंबर इज 30. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. किसी बात का सस्पेंस चल रहा है. रिलैक्स. हर सीक्रेट तुम्हारे वाईफाई पासवर्ड जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता. फोकस ऑन योर ड्रीम्स इंस्टेड. लकी कलर इज चारकोल. लकी नंबर इज 8. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि. आज तुम स्पॉटलाइट में हो. एंजॉय इट. बस ईगो को फ्रंट सीट मत दो. कॉन्फिडेंस अच्छा है. ओवर कॉन्फिडेंस यूनिवर्स को चैलेंज करता है. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 24. पाइसीज यानी मीन राशि. प्रॉब्लम्स को गोस्ट मत करो. वो सीन पे नहीं जाती है. फेस इट टुडे. आज तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा रियलिटी मैनेजेबल होगी. लकी कलर इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 5. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 2. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स और जाकर मुझसे कनेक्ट भी कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर. मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

एक सीक्रेट बताऊं, देसी लोग दो चीजों पर सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, सेल कब लगने वाली है और किस सेलिब्रिटी की किसके साथ फोटो आई है। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूं मिर्ची मॉर्निंग्स एंड फॉर ऑल द फिल्मी पीपल आउट देयर। अभी फिलहाल मेरे रैप अप का टाइम हो चुका है, लेकिन जाने से पहले क्विक बॉलीवुड बज तुम्हें बताकर जाती हूँ। एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने हाफ ईयर फोटो डंप शेयर किए हैं और ईगल आइड फैंस ने उसमें से रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया को स्पॉट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से इनके ब्रेकअप के रूमर्स फुल स्पीड पर इंटरनेट पर चल रहे थे, स्पेशली एक वायरल रेडिट के पोस्ट के बाद। लेकिन कृति की लेटेस्ट पोस्ट देखते ही फैंस ने डिटेक्टिव कैप्स उतार दिए हैं। एक फैन ने लिखा है दैट 15th स्लाइड हिट डिफरेंट, और दूसरों ने लिखा है कि रूमर्स देख के जो टेंशन हुई थी अब वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। अब सच क्या है सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यार सोशल मीडिया पे ना सिर्फ एक पिक्चर दिखाई देता, पूरी की पूरी स्टोरी नहीं दिखाई देती है। इसीलिए थोड़ा सा चिल मोड में रहा करो, थोड़ा सा स्माइल किया करो और थोड़ा सा लेस ओवर थिंकिंग किया करो अगर किसी सेलिब्रिटी के बारे में करते हो और अपने बारे में भी करते हो तो भी चिल मोड में रहा करो। वैसे भी हम सबके फोटो डंप्स में से एक आध ऐसी पिक्चर होती है जिसे घर वाले और फ्रेंड्स और रिश्तेदार और सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, लेकिन सानू की फर्क पैंदा है, असी ते खाओ पियो ते ऐश करो में बिलीव करते हैं। अब इसी बात पर प्रिसला की तरह से टाटा बाय बाय, तुम बने रहो मिर्ची पर, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी। तब तक के लिए तुम मुझे टैगर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। Stay tuned and stay hot.

0: प्रोफेसर, वायरस ने तो हमें नंबर वन की अहमियत काफी लेट बताई थी यार, थ्री इडियट्स मूवी में, लेकिन नंबर वन की अहमियत हमें पहले ही पता लग गई थी। पहली तारीख की अहमियत हमें उस एड से ही पता लग गई थी जब गाते थे कि मीठा है खाना आज पहली तारीख है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. Now you tune in with me on Mirchi. And बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि जो पहली तारीख है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. Like इस ऐड से भी पहले मम्मा हमेशा पहली तारीख पढ़ना जब घर आती थी तो सांता क्लॉस बन के आती थी यार. उनके पास होते थे खाने पीने के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन. वो बेकरी से होती हुई आती थी तो वहां से हमारे लिए केक्स, पैटीज, चिप्स और क्या क्या नए लेकर आती थी. ऑफकोर्स और जो बिस्किट्स और नमकीन का स्टॉक करना होता था महीने भर का, वो भी लेकर आया करती थी. तब से ना जब पहली तारीख आती है तो कुछ कुछ होता है जो आज मैं समझती हूँ, बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था, आज वो डबल हो गया है. बिकॉज यार बचपन की यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं पहली तारीख से, और दूसरा जब हमारी सैलरी आती है तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही होती कि यार आज तो सैलरी आने वाली है. तो बस फिर ये जो चंद लम्हों वाली खुशी है इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सैलरी जैसे आई है उससे जल्दी जाएगी, ऐसा वाला सीन है. इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए पहली तारीख सेलिब्रेट करना तो बनता है बॉस. मुझे तो आप ये बताओ, आप पहली तारीख को कुछ खास करते हो जिससे कि आपको महसूस हो या आपके घर वालों को महसूस हो कि यार आज तो पहली तारीख है. देखो मैं आज भी ना मम्मा की वो जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं फॉलो करती हूँ कि यार हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ये कहते हुए कि अरे यार आज पहली तारीख है. हाँ कुछ ना कुछ तो बनता है ना बॉस. तो बस दिल को खुश करने के लिए ये छोटी मोटी खुशियों का ख्याल ही अच्छा है गालिब. क्या बोलते हो, विडो मोहब्बत की गाड़ी को अब 90s के गियर में डाला जाए? तो बस फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे कहती हूँ Stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.
3: मेरी

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: महेश भट्ट की मूवी की एक खास बात है कि वो अक्सर अपने न्यूकमर्स को जब भी लॉन्च किया करते थे तो उनकी आवाज ओरिजिनल नहीं होती थी, वो हमेशा डब्ड होती थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the same happened जब जॉन इब्राहिम ने पहली मूवी करी अपनी and that was जिस्म, तो उनकी आवाज भी डब थी। In fact, बिपाशा बासु की आवाज भी डब थी। And same राहुल रॉय के साथ भी हुआ था जब उन्होंने आशिकी करी थी and that was his first film, तो उनकी आवाज भी डब की गई थी। पर जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु ने इस फिल्म में पहली बार साथ में काम किया था, लेकिन उसके बाद there was no looking back for like 8 years because इनकी केमिस्ट्री इतनी चल गई ऑन स्क्रीन कि ऑफ स्क्रीन भी दे बिकेम पेर और 8 साल तक इनका रिलेशनशिप रहा था। एंड बिपाशा बसु का ये सेकंड नेगेटिव कैरेक्टर था क्योंकि इससे पहले उन्होंने अजनबी ऑलरेडी कर ली थी। लेकिन इत्तेफाक तो ये है कि जहां जहां भी इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है दैट इज अजनबी एंड जिस्म, इन दोनों ही मूवीज में इनके कैरेक्टर का नाम सोनिया था। हालांकि ये फिल्म आपको पता है सबसे पहले किसको ऑफर की गई थी? अमीषा पटेल को। लेकिन अमीषा पटेल ने मना कर दिया इस रोल के लिए बिकॉज शी थॉट कि वो एक नेगेटिव रोल नहीं प्ले कर सकती। And in fact, John Ibrahimby was the second choice for the film. First choice was Dino Moriya, but since Bipasha Basu and Dino Moriya ka breakup hua hi tha, so the Bhatts did not want ki sets par kuch awkwardness create ho just because the two actors, their lead actors are exes and bahut recently they had turned into exes. एंड हालांकि इस फिल्म का डायरेक्शन अमित सक्सेना ने दिया था, लेकिन आपको पता है ये काफी कहा जाता है और काफी माना जाता है कि महेश भट्ट ने आधी से ज्यादा फिल्म जो थी उसको गोस्ट डायरेक्ट करी थी। तो गोस्ट डायरेक्ट मतलब ये कि डायरेक्टर तो बैठा हुआ है ऑन द सेट्स, लेकिन एक अगला बंदा आता है और वो डायरेक्टर की जगह डायरेक्शन करके चला जाता है। अब भट्ट साहब ने तो पैसा लगाया था मूवी में, तो काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स रहे हैं जहां पर ही वो सो डीपली इन्वॉल्व्ड कि ही ओनली डायरेक्टेड दोस सीन्स फॉर द मूवी, सो दैट इमोशनल टोनालिटी एकदम सेट बैठे। आपको पता है ये फिल्म मैंने कितने जमाने बाद देखी है? स्कूल में जब मैं थी तब तो मैं ये फिल्म देख ही नहीं पाई थी, बैंड था यार हमारा इस फिल्म को देखना। कमिंग अप मोर ऑन जस्ट यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कहने को तो जिस मूवी के लिए जॉन अब्राहम बहुत नए नए थे, इनफैक्ट ही वाज अ मॉडल टर्न्ड इनटू एन एक्टर, और उनसे एक्टिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कोई ऑन द सेट्स, बिकॉज एवरीबॉडी न्यू कि उनको उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज के लिए नहीं चुना गया है, उनकी शक्ल के लिए चुना गया। लेकिन फिर भी देयर वर टाइम्स जब जॉन अब्राहम ने मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल किया था।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड जॉन ने इस फिल्म के बारे में जब एक इंटरव्यू में डिस्कशन करते हुए ये बताया तो मैं भी चौंक गई यार, कि उन्होंने ना कई जगह अपने कैरेक्टर को इमोशनली चार्ज करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया। तो बेसिकली ही वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन जहां पर बंदा जो है ना वो इमोशनली बड़ा बैटर्ड है बिकॉज ही हैज दिस गर्ल इन हिज लाइफ जिसके साथ वो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। इज फॉलन हेड ओवर हील्स इन लव विद दैट वुमन। एंड ट्रॉमा ये है कि वो उस बंदी को पा भी नहीं सकता है, उसके पास जा भी नहीं सकता है, लेकिन मोहब्बत उससे बहुत करता है बिकॉज दुनिया दैट वुमन इज ऑलरेडी मैरिड। एंड यहाँ पर अपने आप को इमोशनली बैटर्ड दिखाने के लिए जॉन अब्राहम ने ये बात बताई थी कि उन्होंने अपनी पास्ट मेमोरीज को, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप रहा था और उनके रिलेशनशिप के जो रफ पैचेस थे उनको याद करना शुरू कर दिया। एट द स्टोरी ही सेड कि इनिशियली इट रिलेटेड टू मी ओनली। एंड इनफैक्ट एक सीन तो ऐसा था जहां पर उनको एक इमोशनल ब्रेकडाउन को इनैक्ट करना था और उन्होंने वो सीन ऐसा दिया कि भाई सीन खत्म हो गया लेकिन जॉन अब्राहम का रोना खत्म नहीं हो रहा था। और भट्ट साहब ने जॉन अब्राहम को आकर ये बात कही कि यार इस तरीके की एक्टिंग तो मैंने या तो शबाना आजमी की देखी है और आज तुम्हारी देख रहा हूँ। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई उस इंसान के लिए जिसको कि हम कहते हैं कि एक्टिंग नहीं आती है। और जॉन अब्राहम ने ये भी बोला कि काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको कि ये लगा था कि यार जॉन अब्राहम को ये फिल्म करनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज यू नो जॉन अब्राहम का जो इंट्रोडक्शन सीन है वो ऐसा है कि यार बंदा टूटा फूटा सा गिरता पड़ता सा नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी हीरो की एंट्री हो रही है बाइक के ऊपर, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। तो जब लोगों को ये बात पता लगी कि जॉन अब्राहम ऐसा कुछ रोल करने वाले हैं जहां पर यू नो उनके करियर की बिगनिंग ही एक ऐसे इंट्रोडक्शन से हो रही है, so why would he do that to himself? And he was actually asked by his friends, "Ki really do you want to do this film? Are you really sure about it?" And John Abraham was very, very sure about it. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो इस कैरेक्टर से शुरुआत से ही बड़ा इत्तेफाक रखते थे, क्योंकि उनको लगा था कि यार ये जो कैरेक्टर का फर्स्ट हाफ है ना, it's more like what really happened in my life as well, which makes me think आखिर कौन थी वो बंदी। खैर सवाल तो सवाल ही रह जाएंगे क्योंकि वी ऑल नो कि जॉन अब्राहम की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता बाबू मुशाए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम, ये फिल्म की शूटिंग में कहीं अक्षय कुमार बीमार पड़े तो कहीं प्रियंका चोपड़ा गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड, तब जाके ये फिल्म बनी है। हालांकि देखने में लगता है फैमिली फिल्म ही तो है, लेकिन नहीं बॉस, इसमें भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, इस फिल्म में एक गाना था सुबह होगी, जो कि अक्षय कुमार के ऊपर ही फिल्माया गया था, और उस गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार काफी बीमार पड़े थे। well, ये फिल्म की शूट 15,000 फीट की ऊंचाई पर हो रही थी, और शूट के दौरान अक्षय कुमार फेंटेड बिकॉज ही रैन शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ था कि शूट कंप्लीट करने के बाद अक्षय ने डिसाइड किया कि वहाँ जो जवान मौजूद हैं उनके साथ वो वॉलीबॉल खेलेंगे, और जब उन्होंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया तो कुछ ही देर में उनकी ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो गिरने लग गए। बाबू भैया, सांस ना आने के सिर्फ 2-3 रीजन नहीं होते कि लड़की को देख लिया तो सांस नहीं आई, और मम्मी ने अगर हाथों में सिगरेट देख ली तो सांस नहीं आई। सांस ना आने की वजहें और भी बहुत सारी होती हैं, कभी आप पहाड़ों पे जाएं तो ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज डेट से मिलना हो तो इतनी स्पेस तो है हमारे पास कि एक मैसेज भेजकर कोऑर्डिनेट कर लिया करते हैं। लेकिन स्मार्टफोन से पहले क्या हुआ करता था, याद दिलाती हूँ आपको।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन्स के मिस्ड कॉल से पहले ब्लैंक कॉल्स या फिर दो घंटे के कॉल हुआ करते थे। अगर फोन दो बार बजकर बंद हो गया ना, इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। और ये जो दो घंटे वाले फोन्स मेरी कजिन के लिए अक्सर बजा करते थे, लिटिल डिड वी अंडरस्टैंड कि ये दो घंटे नहीं, किसी के दिल की धड़कनें थी। हम ट्यूबलाइट थे यार, जो कि बाद में जाकर जली। तब तो हमें समझ ही नहीं आया था कि ये दो घंटे बजकर फोन क्यों बंद हो जाता है। इनफैक्ट हमने तो इस बात पर गौर भी नहीं किया था। गौर तो हमने तब किया जब एक दिन हमारी कजिन की क्लास लग रही थी और बड़ों ने बैठ के उनकी क्लास लगाते हुए यही पूछा कि क्या मसला है ये दो घंटियों का। हाँ, अब हम तो ठहरे बच्चे जिन्हें तमाशा देखना बड़ा पसंद आया करता था, तो हम भी वहीं बैठ गए आलती पालती मार के देखने के लिए कि आखिर ये दो घंटे का रीजन है क्या। वैसे एक बात तो है यार, अब तो ये दो घंटे क्या, हमारे लैंडलाइन पर एक कॉल भी नहीं आता है। तरस जाते हैं कान की कभी लैंडलाइन बजे तो हम जाकर उठाए। अब तो सिर्फ मोबाइल फोन ही खड़का दिया करते हैं सारे के सारे। एक बात तो है यार, एक लैंडलाइन के आसपास कितनी रौनक रहा करती थी, और लैंडलाइन होता भी उस कमरे में था जहां सब बैठते थे। घर में कलेश भी इस चक्कर में कम हुआ करते थे, क्योंकि जहां सब बैठे हैं वहां आप गॉसिप भी तो नहीं कर सकते ना फोन पे किसी और के साथ। और तभी तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली दो घंटियां पकड़ में आ जाया करती थी। हाँ, अगर आपके पास भी लैंडलाइन से रिलेटेड ऐसे कोई किस्से हैं तो डीएम करो और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मोहब्बतें मूवी से ये गाना इज अ मल्टी सिंगर सॉन्ग जहाँ पर वी कैन गेट टू लिसन टू लता मंगेशकर जी, उदित नारायण, उद्भव, मनोहर शेट्टी. एंड ये जो गाना है ना, ये वाकई में बहुत सही बात कहता है कि यार आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है. कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है, क्योंकि यार प्यार की खास बात होती है आपको कब हो जाता है आपको खुद नहीं पता होता है, क्योंकि लोग तो आपको एक इंसान के नाम पे छेड़ रहे होते हैं और आप कह रहे होते हैं अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, अनटिल यू कम अक्रॉस दैट वन डे इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज कि हाँ यार इस इंसान को देखकर कुछ कुछ तो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है उसको समझने में भी टाइम लग जाता है.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा आना बेरे आरा. मान ना मान करो गानों की पहचान लेकर आ गई हूँ मैं. तो दो गाने जो आज मिक्स करके आपके लिए चलाने हैं और आपको पहचानना है कि ये दो गाने कौन से हैं, वो है कुछ यू.

बस अब आपको एक काम करना है, डीएम करना है ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दोनों गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको वो स्कूल में जो हम 3D वाले शार्पनर्स यूज किया करते थे याद है?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या अजीब बात है यार, आज हमारे हाथ में भी एक चीज होती है जिसको कि हम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और उसका कंटेंट जो है वो बदलता चला जाता है। रील पे रील बदलती चली जाती है और हम उसे स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। लेकिन स्कूल के टाइम पर भी हमारे हाथ में एक ऐसी ही चीज हुआ करती थी जिसमें ऑफकोर्स रील पे रील नहीं बदला करती थी लेकिन पिक्चर पे पिक्चर जरूर बदल जाया करती थी, और वो था हमारा एक छोटू सा शार्पनर जो कि 3D शार्पनर हुआ करता था। और उसमें एक पिक्चर 3 डायमेंशन में हमको नजर आया करती थी और जैसे जैसे हम उसे मूव किया करते थे वो पिक्चर चेंज होती चली जाती थी और हमें लगता था कि वाह क्या जादू है, क्या एक्साइटमेंट लेवल हुआ करता था यार इस छोटी सी चीज का। आज हम बड़ी बड़ी रील्स देखकर भी इतना ज्यादा खुश नहीं होते, इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, ऐसा कोई डोपामिन के हॉर्मोन्स नहीं निकल के आ रहे होते। लेकिन जब हम उस एक शार्पनर को देखा करते थे तो हमें लगता था कि वाह दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है यार, क्या चीज बना दी है और क्या क्यूट सी चीज हुआ करती थी यार ये। मैं बड़ी एक्साइटेड रहती थी अपने उस शार्पनर को लेकर। हाँ, मैं ना ही उसे डेली स्कूल ले जाया करती थी और ना ही मैं उसे बहुत इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि क्या था ना कि डर था चोरी हो गया तो। आजकल तो सभी बच्चों के पास सब कुछ होता है, लेकिन तब इस बात की तसल्ली कर लिया करते थे कि यार एक के पास कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं है तो इट्स ओके, बिकॉज़ दैट इज लाइफ। आजकल तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और पेरेंट्स इसको अवेलेबल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, दिस कम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट। आपको पता है मेरे पास ना ग्रीन कलर का एक शार्पनर था जिसके आगे तो एक ब्रश लगा हुआ था और पीछे एक इरेजर लगा हुआ था और बीच वाला पार्ट वॉज द शार्पनर और उस पर बनी हुई थी रेसिंग कार्स। ओए होए, 3 रेसिंग कार्स एक शार्पनर के अंदर। जैसे जैसे उसकी मैं बदलती जाऊं डायरेक्शन, वैसे वैसे गाड़ियां भी बदलती जाती थी। वो अलग बात है कि बड़े होने के बाद एक गाड़ी की EMI ही चुकता हो जाए उसी में इंसान खुश हो जाएगा, 3 गाड़ियां तो दूर की बात है। बॉस, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर कजिन्स के इकट्ठा होने वाली रात,
2: यादों को चिट्ठी।
1: अब तुम लीप ईयर इनटू टू में आती हो, यानी कि चार चार नहीं आठ आठ सालों में, जब हम सारे कजिन्स को एक अरसे बाद मौका मिलता है इकट्ठे होकर गप्पे मारने का। There was a time जब तुम एक ही साल में दो बार आती थी, गर्मियों की छुट्टियों में फिर सर्दियों की छुट्टियों में। अब तो छुट्टियां ही नहीं आती यार, तो तुमने भी आना बंद कर दिया है। ये वो रातें हुआ करती थी जब हम पूरी रात जागा करते थे, एक दूसरे की टांग खींचना, गप्पे लड़ाना, एक ही रजाई में बैठ कर मूंगफलियां खाना और गेम्स खेलना, और फिर आधी रात को जब भूख लगे ना तो दबे पैर किचन में जाना और चाय और मैगी बनाना। हाय, कुछ रातें तो ऐसी भी थी जब मैं ना अपने सबसे क्लोज और फेवरेट कजन के साथ बैठकर बातें किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल के छाले फोड़ा करते थे। रात खत्म हो जाती थी लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती थी। जाने कितने सनराइजेस देखे हमने तुम्हारी कंपनी में कजन्स के इकट्ठा होने वाली रात। एक दूसरे के साथ बैठकर हार्ट टू हार्ट टॉक्स करी है, स्कूल की पढ़ाई, नया क्रश और टीचर्स का दिया गया ट्रॉमा डिस्कस किया करते थे हम। तब जिंदगी के बारे में चीजें डिस्कस करते करते ये तो सोचा ही नहीं कि आज जो इतनी सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। और तब ये जाना भी नहीं कि आने वाले टाइम में जो बड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लायक होंगी, तब वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा कि हम और हमारे दिल के करीब वो कजिन्स इतने दूर या मसरूफ होंगे कि जब असल में उनकी जरूरत पड़ेगी ना दिल हल्का करके बातें करने के लिए, तो ये एग्जैक्टली वही टाइम होगा जब वो हमें मिल ही नहीं पाएंगे। वक्त के पहिए में अटक कर उसी वक्त को तरसती हुई जब हमारे पास भी तुमसे मिलने का वक्त हुआ करता था। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, ये जो गाना है ना, आई फील दिस इज द एपिटमी ऑफ लव, क्योंकि इस गाने में जो बात कही गई है ना, एक्चुअली सच्चा प्यार मुझे यही लगता है, मतलब रियल केमिस्ट्री इज इन द साइलेंस, नॉट इन द कॉन्वर्सेशन। कहते हैं कि कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ बस एक तुम हो, तो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। एंड दो लोगों के बीच में जब एक गहरी सी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी होती है, एक समझ होती है एक दूसरे के लिए दो लोगों के बीच में, उस टाइम पर बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है उन दोनों लोगों के बीच में, कॉन्वर्सेशन की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इतनी सारी बातें जो है ना वो बिन कहे ही अगला इंसान समझ जाता है, कभी आंखों ही आंखों में, कभी सिचुएशन को समझते हुए, या फिर कभी इशारों में। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इन अ रिलेशनशिप इज कॉन्वर्सेशंस तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट वो कॉन्वर्सेशंस करते करते करते करते इंसान एक दूसरे को इतना समझने लग जाता है कि फिर वो जो साइलेंस होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है, बिकॉज दोनों को ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इस साइलेंस को शेयर कर सकते हैं, एंड दिस साइलेंस इज नॉट गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल। एंड आई रियली रियली फील कि जब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है, और तब जब ये साइलेंस शेयर हो रहा होता है विच इज नॉट अनकम्फर्टेबल, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? DM करके बताना ना मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए यही गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। और बाकी यहाँ के अलावा मुझे तो आप ढूंढ ही सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज अगेन मिर्ची सारा। चलो जी, आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखो एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: जब भी राजकुमार साहब का जिक्र होता है, जानी लफ्ज अपने आप ही जहन में आ जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में जानी लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1968 की फिल्म वासना, जी इस नाम से भी फिल्में बनती थी, इसमें उन्होंने, सुनिए इस डायलॉग में कैसे जानी बोला।
2: और डालो जानी,
3: अपन शराब उधार बेचने का कसम खाया है, ये बोर्ड नहीं देखते आज न कल उधार।
2: ये तो वो बात हुई जानी कि आज मरो और कल जियो।
1: अच्छा, ज्यादातर ये माना जाता है कि वक्त फिल्म के किसी बहुत पॉपुलर डायलॉग में उन्होंने जानी बोला है, जबकि ऐसा नहीं था। हुआ कुछ यूं था कि श्रीदेवी ने चालबाज फिल्म के कॉमेडी सीन में उनकी मिमिक्री करते हुए वक्त फिल्म के डायलॉग को कुछ ऐसे बोला था, सुनिए।
4: जानी ये चाकू है क्या है?
5: चाकू,
4: लग जाए तो खून निकलाता है।
1: और वाकई में वक्त फिल्म का डायलॉग क्या है, जब वो विलन के हाथ में चाकू को देखकर ये बोलते हैं,
6: ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
1: सो द ट्रूथ इज, राजकुमार साहब ने फिल्मों में ज्यादा जानी नहीं बोला है, बल्कि वो रियल लाइफ में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो जानी, उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकीज़ा फिल्म कम्प्लीटली बिलोंग्स टू मीना कुमारी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये बात भी है कि राजकुमार साहब ने उस फिल्म को एक अलग तरह से ओन किया था, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले थे। जैसे कि ये एक डायलॉग जो मोहब्बत में बागी बनकर वो अपने बड़े अब्बा को बोलते हैं, सुनिए।
2: मैं भूल गया था इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है।
1: ओए होए होए होए, फिर उनका शायरी बोलने का अंदाज भी अजब गजब रहा है। इसी फिल्म में जब वो एक शेर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
3: बदल कर फकीरों का अंधे सवालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं।
1: ये हुई ना शेरों वाली बात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब जब कोई किरदार निभाते थे तो किरदार उनमें नहीं घुसता था, वो किरदार में घुस जाते थे। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यही तो थी उनकी अलग बात। अच्छा, उनकी एक अर्ली 80s की मूवी थी बुलंदी, उसके कुछ डायलॉग सुनते हैं। एक सीन होता है जिसमें रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद डैनी उनको फेस करते हैं सड़क पे, तो उनको वो क्या बोलते हैं?
2: बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं।
1: इसी फिल्म में एक फंक्शन में वो एक शायरी भी बोलते हैं।
2: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: ऑल्सो इसी फिल्म में जब उनको मारने की धमकी दी जाती है तब वो क्या बोलते हैं, सुनिए।
2: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: कितनी बार ये शेर सुना है, लेकिन राजकुमार साहब के मुंह से सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: सारे गामा वन टू थ्री फोर
1: सारे गामा मा सारे गांका सारे मा मांगा रे सा सारे गामा मा सारे गांका सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा
2: जानी ये हमारा स्पेशल शो है राजकुमार स्पेशल।
3: सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राजकुमार साहब डायलॉग्स ही बढ़िया नहीं बोलते थे, शायरी भी क्या बढ़िया बोलते थे। उनके रोमांटिक रोल्स में भी डायलॉग डिलीवरी अलग ही तरह की होती थी, जैसे उनकी फिल्म हीर रांझा में। सुनिए शायरी उन्होंने कैसे बोली।
4: तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं।
3: ओए होए होए होए, सदके जाऊं। वैसे राजकुमार साहब ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 की फिल्म रंगीली से की थी। फिर उनको पहचान मिली 1957 की मदर इंडिया फिल्म से। हालांकि उसमें उनका रोल काफी छोटा सा था, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि राजकुमार भी बड़े बन गए। राजकुमार साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1964 की फिल्म दिल एक मंदिर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए। इसी का गाना सुनते हैं जो रील्स पे काफी ट्रेंडिंग है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब को उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जिस फिल्म से पहचान मिली थी ना, वो थी 1965 की वक्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और खास तौर पे इस फिल्म में उनके और एक्टर रहमान, जो इसमें चिनॉय सेठ प्ले करते हैं, इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स थे ना, वो बहुत पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला।
2: ये काम सिर्फ राजा कर सकता है, और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत, चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
1: ओए होए, ग्लास फोड़ दिया। नहीं सही में, इस सीन में जब ये डायलॉग खत्म होता है तो राजकुमार साहब के हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है जो वो टेबल पे ऐसे फोड़ देते हैं। इस फिल्म के लिए उनको अपना दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीन्स में से एक है पाकीज़ा फिल्म का ट्रेन वाला सीन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स है वो डायलॉग जो राजकुमार साहब ने कहा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है शायद इसीलिए वो आइकॉनिक बन गया है। तो सीन कुछ यूँ होता है, राजकुमार साहब का जो किरदार है वो आनन फानन में बरसात की रात में ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट की जगह किसी गलत कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वहाँ वो मीना कुमारी से मिलते हैं। एक्चुअली मिलते नहीं है क्योंकि वो तो सो रही होती है ना, और उनके चेहरे की तरफ तो वो ठीक से देखते ही नहीं है क्योंकि वो उनके खूबसूरत पाँव ही देखते रह जाते हैं। और फिर उनके पाँव में एक प्यारी सी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं। उस चिट्ठी पे क्या लिखा होता है ये सुनिए।
2: माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, आपका एक हम सफर।
1: ओए होए होए होए होए होए। वैसे जिसने ये फिल्म देखी है ना वो ये जानता है कि जिस तरह से राजकुमार साहब का किरदार इसमें मीना कुमारी के किरदार से प्यार करता है, वैसा प्यार हर कोई चाहता है, ट्रू लव। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तो फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना फिल्मी नाम रख लिया राजकुमार, जो उनको वेल सूटेड था, क्योंकि राजकुमार राजा महाराजा जैसे वो रहते थे। और उनके कई पॉपुलर डायलॉग्स में से एक है उनकी लेट 80s की एक फिल्म सूर्या का ये डायलॉग। इस फिल्म में वो एक कलेक्टर प्ले करते हैं, सुनिए जरा।
2: हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी?
1: वैसे कलेक्टर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, इस तरह के रोल्स उनको बहुत ही नेचुरली सूट करते थे, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो बॉम्बे पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब करते थे। जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
3: पुरानी जींस चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: 1970 की फिल्म हीर रांझा एक सुपरहिट फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इसके हिट होने का, इसके पोएटिक डायलॉग्स। इसमें हीर का रोल प्ले करती हैं प्रिया राजवंश और रांझा का रोल प्ले करते हैं राजकुमार साहब। और राजकुमार साहब हो और डायलॉग डिलीवरी की बात ना हो, कैसे हो सकता है। चलो, उनके ढेंटड़ एंड डिशुम डिशुम एक्शन वाले डायलॉग्स जो होते थे वो तो एक से एक बढ़कर होते थे, लेकिन उनके ये जो रोमांटिक पोएटिक डायलॉग्स होते थे इनकी भी एक अलग ही बात है। तो हीर रांझा में एक शायरी जो वो रिसाइट करते हैं हीर के लिए, वो सुनते हैं।
2: तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास, तुझ में भोलापन भी है, शोखी भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से, तू इस सब पाया है, आशिक की नजर पाई नहीं। जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं।
1: ओए होए होए होए होए होए, दिल किडनी जिगर सब निकाल कर ले गए सर। अज्ञानी राजकुमार साहब, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब की एक पॉपुलर इमेज ये थी कि वो बहुत आउटस्पोकन, बिंदास, इसेंट्रिक, सनकी टाइप के थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ऐसे तो थे ही, लेकिन उनकी एक दूसरी साइड भी थी जहाँ वो बहुत ही काइंड, मॉडेस्ट और नरम दिल के थे। लेकिन यहाँ पर हम उनका एक सख्त डायलॉग सुनने वाले हैं वक्त फिल्म से। एक्चुअली 1965 की वक्त फिल्म है जिसने उनकी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी को एक पहचान दी। इसमें उनके डायलॉग्स काफी हिट हुए थे, खास करके चिनॉय सेठ प्ले कर रहे रहमान के साथ जो उनके इंटरैक्शंस होते हैं। तो ऐसा ही एक इंटरैक्शन सुनते हैं।
2: चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था, अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिनॉय सेठ।
1: तो ये एंड में जो आवाज आई ना, तो इसमें वो इस सीन में वो गन शॉट से दो लैंप फोड़ देते हैं। ये प्रोड्यूसर्स को राजकुमार साहब के डायलॉग्स बहुत महंगे पड़ते थे, कभी वो लैंप फोड़ देते थे, कभी ग्लास तोड़ देते थे। खैर, नरम दिल इंसान जब गुस्सा करता है तो काफी कड़क हो जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार साहब जिस तरह से मीना कुमारी जी से प्यार करते हैं ना, ऐसा प्यार करने वाला सबको मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मोहब्बत के लिए इस फिल्म में वो अपने घर वालों से बगावत कर लेते हैं और इस बगावत वाले सीन के बाद ना एक सीन होता है जहाँ पे ये दोनों राजकुमार और मीना कुमारी एक बालकनी में खड़े होते हैं और बालकनी से सामने से नजारा दिख रहा होता है, पहाड़ होते हैं और झरना बह रहा होता है। और इसमें ना सिचुएशन कुछ यूं होती है कि मीना कुमारी जी ऐसा नाटक कर रही होती हैं कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, वो अपने आप को भूल चुकी हैं। तो इस सीन में सुनिए इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है।
2: तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है।
3: लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ।
1: उफ तौबा, सदके वारी जाऊं। और इसी रोमांटिक सीन के बाद आता है ये रोमांटिक गाना जो हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: डिलीवरी जो राइटर्स को अच्छे डायलॉग्स लिखने पर मजबूर कर देती होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी ही डायलॉग डिलीवरी करते थे राजकुमार साहब। किसी भी फिल्म में राजकुमार साहब हो, ये तो तय होता था कि उसके डायलॉग एकदम धांसू होंगे। ऐसी एक फिल्म थी लेट 80s की, मरते दम तक। इस फिल्म के उनके कुछ डायलॉग्स काफी पॉपुलर हैं, सुनिए जरा।
1: हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी।
0: क्या बात है भाई। वैसे आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी ना, प्लीज देखें, खास करके इसके दो ग्रेट एक्टर्स के लिए, राजकुमार साहब और ओम पुरी साहब। दोनों इसमें गैंगस्टर प्ले करते हैं जो आपस में भिड़ते रहते हैं, और क्या डायलॉग बाजी है दोनों के बीच में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: Mirchi, it's hot.
1: Jani, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई ऐसा सुनने में आता है कि राजकुमार साहब के फिल्मों के सेट पे अलग ही तरह के टैंट्रम्स होते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बहुत पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग तो थे, लेकिन उनके टैंट्रम्स भी होते थे। जैसे कि उनको सफेद जूते पहनना बहुत पसंद था। कई बार यूं भी होता था कि सीन में वो जूते सूट भी नहीं कर रहे होते थे या रिक्वायर्ड भी नहीं होते थे, लेकिन उनको पहनने होते थे। वैसे चाहे डिशुम डिशुम, ढेंटड़न, एक्शन टाइप के रोल्स हों या सॉफ्ट रोमांटिक डायलॉग्स हों, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी पार एक्सेलेंस। उनकी ही रांझा फिल्म का ये डायलॉग सुनिए जरा।
2: मोहब्बत का तमाशा, इश्क की तासीर देखोगे, मेरे सीने में दिल में हीर की तस्वीर देखोगे।
1: क्या बात है। और इस फिल्म में उन पर पिक्चराइज्ड एक गाना, वो तो एक तरह का एंथम बन गया था उस टाइम पे जब रिलीज हुआ था, बहुत ही हिट हुआ था। इनफैक्ट आज भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आप अपने लाइफ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग्स से, अपने दोस्तों से बेजार हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, और ये गाना सुन लें तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार कुछ लोगों के लिए टॉक्सिसिटी बिकम्स अ ड्रग।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, एग्जाम्पल सबसे पहले कोट करना चाहती हूँ एक रिलेशनशिप का। आपने देखा होगा अपने आसपास कि बहुत सारे लोग टू एंड फ्रो करते रहते हैं अपने रिलेशनशिप पे, दे कीप स्विंगिंग इन एंड आउट कि भाई किसी दिन बहुत मूड खराब हो गया तो सब कुछ खत्म कर देना है, लेकिन फिर क्या है कि रह भी नहीं पा रहे उस इंसान के बिना। और ऐसी ही सी फीलिंग मुझे मिली है अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर। देखो अभी मैंने आपको कल बताया था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि फिरोज नाडियाडवाला ने लिटरली ये बोल दिया है कि भाई ये फिल्म बहुत जल्द तैयार होने वाली है, इट इज इन द पाइपलाइन। लेकिन अब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा है कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3। तो भाई देख लीजिए कि ये मूवी बनेगी भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सीधे बोला कि सब कुछ मुझे तो अभी के लिए डामाडोल लग रहा है यार। एंड दिस इज वाई आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ टॉक्सिसिटी एज अ ड्रग। वैसे रिलेशनशिप में आप भी ऐसे टू एंड फ्रो कर रहे हैं, देन इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप से ही एक सही सवाल जरूर करें। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: ची फिल्म ची
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हर रोज की बात ही, इट्स टाइम टू फाइंड द फिल्मी कीड़ा आपके अंदर का। द थिंग इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर मैसेज करना होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो चलिए आज के गेम की शुरुआत करते हैं, जिसको खेलने के लिए आई कॉल्ड अमन जी। कैसे हैं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: बनारस से हूँ और बैंगलोर में जॉब करती हूँ।
0: अरे रे, बनारसी बाबू हैं आप, आपके पड़ोसी हैं हम बिहार से हैं वैसे तो।
3: अरे बढ़िया बढ़िया।
0: ओके सर, तो क्या आप तैयार हैं ये फिल्मची गेम खेलने के लिए?
3: जी जी तैयार हूँ मैं।
0: ओके, तो आपका पहला सवाल है, समंदर के कलर के नाम वाली फिल्म जिसमें शार्क्स थी।
3: ब्लू।
0: क्या बात है, ब्लू फिल्म के किस हीरो को इंडस्ट्री में बाबा बोलते हैं?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में डीन से पूछते हैं कि ये बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में हो तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या?
3: मुन्ना भाई एमबीबीएस।
0: मुन्ना भाई में सर्किट कौन है?
3: अरशद वारसी
0: किस फिल्म में एज अ जर्नलिस्ट अफगानिस्तान में वॉर के आफ्टर मैथ को कवर करने जाते हैं?
3: काबुल एक्सप्रेस।
0: बहुत बढ़िया, काबुल एक्सप्रेस में अरशद वारसी के साथ ही जर्नलिस्ट कौन है?
3: जॉन अब्राहम
0: किस फिल्म में टैक्सी में ट्रैवल करते हैं?
3: टैक्सी नंबर 9211।
0: क्या बात है, एकदम हार्ड कोर फिल्मची हैं आप। टैक्सी नंबर 9211 में टैक्सी ड्राइवर कौन है?
3: नाना पाटेकर
0: किस फिल्म में आलू और कांदा बेचते हैं?
3: वेलकम।
0: वेलकम में ऊंचा लंबा कद किसका है?
3: कटरीना कैफ का।
0: कटरीना कैफ एक ISI एजेंट किस फिल्म में बनी है?
3: एक था टाइगर।
0: कहीं तो रुक जाओ सर। एक था टाइगर में रॉ एजेंट कौन है?
3: एक था टाइगर में रॉ एजेंट
0: सलमान खान। लवली सिंह किस फिल्म में है?
3: लवली सिंह रिपोर्टिंग बॉडीगार्ड।
0: ओहो, बॉडीगार्ड में सलमान किसके बॉडीगार्ड है?
3: करीना के।
0: करीना कपूर फ्लाइट अटेंडेंट किस फिल्म में बनी है?
3: क्रू
0: की कौन सी हीरोइन कॉकटेल 2 में भी है?
3: कृति सैनन
0: जानवरों की डॉक्टर किस फिल्म में बनी है?
3: वरुण धवन के साथ कौन सी? भेड़िया।
0: कहीं नहीं रुकने वाले ये। भेड़िया में किसके बम पे भेड़िया काट के चला जाता है?
3: वरुण धवन
0: एक टेलर किस फिल्म में बने?
3: सुई धागा।
0: बाप रे, सुई धागा में उनकी वाइफ कौन है?
3: विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा।
0: अनुष्का शर्मा हाई एंड फॉरेन गुड्स किस मूवी में स्मगल करती है?
3: बदमाश कंपनी
0: में मास्टर माइंड कौन है?
3: शाहिद कपूर है।
0: शाहिद कपूर का डबल रोल किस फिल्म में है?
3: शाहिद कपूर का डबल रोल कमीने।
0: कमीने में उनकी को स्टार कौन है?
3: प्रियंका चोपड़ा
0: की किस फिल्म का नाम मिठाई के नाम पे है?
3: बर्फी।
0: बर्फी में हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड कौन है?
3: हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर के पास सुपर पावर किस फिल्म में है?
3: तो ऐसे तो फुल सुपर पावर उसको बोल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र में अगर चाहे तो। मतलब
0: बिल्कुल सही जवाब, 7 करोड़ अगर मेरे पास होते तो मैं आपको देने का सोचती सर, बट आपने जो एक गो में ये फिल्मची गेम एकदम टॉप कर लिया है उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई, अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी इधर उधर ऐसे करवटे ले रहा है तो उसको जगा के रखिएगा, क्योंकि कल ये गेम वापस आएगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।